महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास। और ये सदा किसकी सदा थी जो ये कहता हुआ चला गया कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। ये थे जनाब मुकेश साहब, जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और ज़िंदा हैं।

0: लेकिन ये पियानो कौन बजा रहा है? तुम बंद करो इसे, मैं कहती हूँ बंद करो इसे। मैं प्यार नहीं करती तुमसे, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा।
1: हमारे बीच कुछ नहीं रहा?
0: क्या हक है तुम्हें मेरे ही घर में घुस के मुझे सताने का?
1: तभी तो तुम तक मेरा जुनून, मेरे प्यार का पागलपन पहुंचेगा।

तग धुमी तग ताली तग जमी तग झाला आंबो तग जग तग ताली गेने तू तग नाक तग झुमी तग नाक नाक झुमी तग नाक नाक झुमी तग नाक नाक झम तारी ता जग तारी ता जन जाने को तारी ता को तारी गेने ताली तारी ता जग तारी ता जन जाने को तारी ता को तारी गेने झम तारी जग तारी तग नाक ताक ताक झुमी ताक झुमी ताक झम तारी जग तारी जाने

एक बार असुर राज भस्मासुर भोले शिव शंकर की भक्ति करके भोले भंडारी को प्रसन्न कर लेते हैं और भोलेनाथ उनको दर्शन देते हैं, वरदान मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन भस्मासुर उनके साथ माँ पार्वती को देखकर मोहित हो जाते हैं, लेकिन उनको कैसे मांगे ये विचार करके एक वरदान मांगते हैं कि जिस किसी के सिर पर मैं हाथ रखूं वो वहीं भस्म हो जाए। भोले भंडारी तथास्तु कहकर चलने लगते हैं तो भस्मासुर उनके पीछे शिव पर हाथ रखकर भस्म करने के लिए आ जाता है। भोलेनाथ समझ गए कि मेरा ही वरदान मुझ पर आजमाना चाहता है। भोलेनाथ अपने प्राण बचाने के लिए भागते हैं और एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। भस्मासुर गुफा के द्वार पर बैठ जाते हैं। ये सब लीला नारायण देख रहे थे। भगवान विष्णु नारायण तुरंत मोहिनी का रूप बनाकर भस्मासुर को नाचने के लिए कहते हैं और मग्न होकर भस्मासुर नाचते नाचते अपना हाथ अपने ही सर पर रख देता है और भस्म हो जाता है। तो ऐसे भोले भंडारी हैं मेरे भोले बाबा।

0: live vanuit de Hoogstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो डे अबे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है, तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

नम्र संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

यह है उजाला रेडियो का कॉफी चाय मिदक शो। यहीं से शुरू किया जा रहा है आज सोमवार फंदाग मंडाग 20 जुलाई के लिए। और हम शुरू करते हैं प्रोग्राम लेकर ये गाना के साथ, और वो भी नाच मेरी जान फटाफट। ये गाना जो हम सुनी ला डांस लात में फंतासी हेल माल ऑफ हॉल।

चलिए एक गाना हम चलाते हैं और भी लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज़ में, जब तक आनंद यहाँ स्टूडियो में नहीं आएंगे तो दीता चलिए हम आपको ये नामा सुनाने को जा रहे हैं। लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार के आवाज़ में है, पेश किया जा रहा है, और ये है फिल्म आंधी का गाना है। चलिए हम आपको ये नामा सुनाते हैं। गरमा सुनने में, जब गरमा सुनिए तो कितना सुकून मिला है ना। लता मंगेशकर किशोर कुमार के आवाज में कि तेरे बिना जिंदगी से पेश किया जा रहा है उजाला रेडियो पर।

यू आर उजाला रेडियो, ये है सुन लो हर एक काम का, चलिए चेक ऑन द वेबसाइट उजाला.net। यू आर उजाला रेडियो।

0: live vanuit de hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा

बीनू कोटरावा, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवा लो। तो डीजे आप फरमाइश और उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो और उजाला रेडियो। दिस खाई बीनू कोटरावा, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट कॉप मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो और उजाला रेडियो।

तुम सबसे हंसी हो, तुम सबसे जवां हो। महेंद्र कपूर जी के साथ आशा भोसले से गीत आप सुने। फिल्म का नाम मोहब्बत जिंदगी है, मोहब्बत जिंदगी है। इसी फिल्म से निकाला हुआ एक और गीत पेश है, और इस बार गायक होंगे मोहम्मद रफी साहब।

तुम्हारी मुलाकात से मुझको ये पता भी चला कि मेरे भी सीने में है दिल एक धड़कता हुआ। मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म का नाम मोहब्बत जिंदगी है और ये उजाला रेडियो है।

0: मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
1: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
0: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?

मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉनर टूर ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

ये था उजाला रेडियो पर बजने वाला गीत. उजाला रेडियो आप सुन सकते हैं हर एक दिन, हर एक रोज, सात दिन, 24 घंटे लगातार ऑनलाइन ऑफ या डीएबी प्लस नीदरलैंड भर में.

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

ये है उजाला रेडियो का कॉफी चाय मिदख शो। यहीं से शुरू किया जा रहा है आज सोमवार फंदाग मांदाग 20 जुलाई के लिए। और हम शुरू करते हैं प्रोग्राम लेकर ये गाना के साथ और भी नाच मेरी जान फटाफट। ये गाना जो हम सुनी ला डांस लात में फंतासी हेल माल ऑफ हॉल

चलिए एक गाना हम चलाते हैं और भी लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज में, जब तक आनंद यहाँ स्टूडियो में नहीं आएंगे तो चलिए हम आपको ये नामा सुनाने को जा रहे हैं। लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार के आवाज में है, पेश किया जा रहा है और ये है फिल्म आंधी का गाना है। चलिए हम आपको ये नामा सुनाते हैं। गनवा सुनने में, जब गनवा सुनिए तो कितना सुकून मिला है ना। लता मंगेशकर किशोर कुमार के आवाज में कि तेरे बिना जिंदगी से पेश किया जा रहा है उजाला रेडियो पर।

0: आनंद तो से हमसे कोई सिखवाना है कि तू लाती आवे है गया मैं तो है अहले तो कोई सिखवा ना है कोई सिखवा है
1: तू आओ हम बोली गनवा दोनों जाई तब क्या कोई तो
0: ना ना गनवा गनवा हम लोग सुनाई ले है गया दोस्त यार मैं सेवत
1: खोर इतना मोई गाना
0: मंग्रेसी
1: खुद मेरा
0: कोई मेरा
1: हाँ गनवा के ऊपर हम लोग के बतियाए के चाहिए आई लग अच्छा
0: ओ
1: लोहित
0: ओ कहे के
1: जोशी गनवा दिद तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं eigenlijk is dit een van de mooiste liedjes, liefdesliedjes. Onvolmaakte liefdesliedjes. Hij zegt ja, hij bolle ke.
0: Want onvolmaakte.
1: Het is niet echt een liefdesliedje waarin alles goed gaat, hè?
0: Nee.
1: Het is juist een liefdeslied. Jahan pe na jaega, jaise tu mangte, je bent niet bij elkaar.
0: Ja.
1: Dat beseffen mensen soms niet. Dus teri bina, tor bina, dus zonder jou. Zindagi se koi shikwa nahi. Dus ik heb geen klachten over het leven.
0: Mm-hmm. Zonder jou.
1: Na hoef klager. Torbina.
0: Torbina.
1: Dus eigenlijk zegt hij, zonder jou is er geen leven.
0: Ai.
1: En zonder jou heeft het geen zin om te klagen over iets. Torbina kuchna haiga.
0: Kitna gehra haiga. He?
1: Zo to konchi gawel haiga.
0: Ja.
1: Or John Ganwa likhis ba jaysa saban. Gulsar heeft het geschreven.
0: Ja.
1: Hamre Jan R.D. Burman ke music ba Lloyd
0: yeah. Yeah, yeah,
1: ha Gulsar yeah, likhis ba yeah, inderdaad
0: yeah. Nee,
1: Lata Mangeshkar en Kishore ki awaaz mein natuurlijk
0: yeah.
1: Maar dit nummer hai aadmi sunega mana mooi se samajh paega
0: na samajh paega
1: ki konchi gawel ba
0: yeah.
1: Andhi film ka naam hai Andhi 1975
0: yeah.
1: Hai Lloyd John John jaar mein Suriname onafhankelijk
0: hai
1: ba
0: hai laga ya
1: dus eigenlijk is eigenlijk ganwa mein na koi gussa hai ga और ना तो कोई फरवाइत हैगा
0: नहीं
1: मां अरे सन सॉर्ट फन कैसे बोला जाएगा एक्सेप्टेंसी
0: एक्सेप्ट
1: कि जीवन जीवन दोरो जाएगा
0: हां
1: जीवन दोरो जाएगा तोर बिना मार एक्चुअली जीवन अधूरा हैगा ओमन ना कोई गर्मी है ओमन ना तो कोई मतलब है ओमन ना तो कोई कलर है ना तो geur है कुछ भी ना है लोइट
0: या
1: दोस इट लीव गा दोर मां सोंडर यो इज इट

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं। हर एक सुनने वालों को आदाब अर्ज और नमस्कार, मैं निशा बोल रही हूँ। इस प्रोग्राम सबरंग में सभी सुनने वालों को एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। संगीत जो हमने चुने हैं आपको सुनवाने के लिए, इन गीतों की खुशबू से आपका दिल महक उठेगा, आप इत्मीनान से खूबसूरत एहसासों में प्रोग्राम से लुत्फ उठाइए, मजे लीजिए। शुरू करती हूँ महान शास्त्रीय संगीत का गायक भीमसेन जोशी और प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर से ये भजन।

राम का गुणगान करिए, श्रीनिवास कले का संगीत और पंडित नरेंद्र शर्मा से पेश था ये भजन। खूबसूरत जिंदगी की तामीर दुआओं पर होती है। दिल की गहराइयों से दुआ है कि खूबसूरत जिंदगी हमेशा आपका नसीब रहे। खुदा आपको हर मुश्किल व परेशानी से महफूज रखे और आसानियां अता फरमाए।

रूहानी अंदाज में पेश था ये मजहबी संगीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में। अगर तुम्हारे आना ही का है सवाल, तो फिर चले आओ, मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए।

तेरे नज़दीक आना चाहता हूँ। असद अजमेरी का कलाम, मौसिकी थी नायाब राजा की, आवाज़ थी उस्ताद गुलाम अली की। तूने नफ़रत से जो देखा, तूने नफ़रत से जो देखा, तो मुझे याद आया कैसे रिश्ते तेरी खातिर तोड़ आया हूँ। कितने ढूंढले हैं ये चेहरे जिन्हें अपनाया है, कितने उलझी थी वो आंखें, कितने उलझी थी वो आंखें जिन्हें हम छोड़ आया हूँ। जो भी दुख याद न था याद आया।

क्या अहमद फराज का कलाम और उस्ताद जाकिर हुसैन की मौसिकी थी, आवाज हरी हरन की। अजीब जलवा नुमाई है, जिधर देखूं तुम ही तुम हो। मुझे तो आईने में अक्स भी मेरा नहीं मिलता, तेरे जलवे अब मुझे हर सू नजर आने लगे।

प्यार भरे अंदाज में पेश थी ये गजल महान गायिका लता मंगेशकर की आवाज में। जगजीत सिंह की मौसिकी कलाम था सबा अफगानी की। उसकी निगाह में कोई जादू जरूर था, जिस पर भी परी उसके जिगर में उतर गई।

सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। कितने हैं जो आज भी सपनों की रोटी पकाते हैं और खाली पेट सो जाते हैं। मना दे से पेश था ये गीत, शंकर जयकिशन संगीत से सजाए हैं और शैलेंद्र ने तर्स को लिखे थे। अब लीजिए पेश है अगला गीत, तलत महमूद और लता मंगेशकर के मिलकर क्या सुनाएंगे, आइए सुने।

चमका चमका सुबह का तारा से रामचंद्र का संगीत रचना और नूर लखनवी का लिखा तर्ज था। अगला गीत सुनवाने को जा रही हूँ, गाने वाले हैं हेमंत कुमार।

साथ हमारा दे न सके, हेमंत कुमार की आवाज और उन्हीं का लिखा तर्ज में पेश था ये गीत। कुछ मिला कुछ मिला, कुछ मिलते मिलते छूट गया, शायद शायद सपना था, आंखें खुलते ही टूट गया। प्रीति कैसी बोल रे दुनिया।

अनमोल गीत पेश था फिल्म दाग में से ये गीत लिया है, आवाज थी लता मंगेशकर की। तर्ज़े वफा को इसकी क्या नाम दूं मैं, वो खुद दूर हो गया है मुझको करीब करके, आए बहार बन के लुभा कर चले।

एवरग्रीन सॉन्ग पेश था शंकर जयकिशन की मौसीकी और हसरत जयपुरी का तर्स, आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की। अब आइए सुने गीता दत्त से अगला गीत।

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

सभी सुनने वालों को निशा की तरफ से एक बार फिर आदाब अर्ज और नमस्कार। कई हफ्तों से हम उन महान फनकारों के बारे में इत्तला किया है जिन्होंने ऐसे काम किए हैं कि आज भी जब हम बॉम्बे फिल्मी दुनिया की फिल्मों की चर्चा करते हैं तो उन लोगों को हम जिक्र करते हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया के इतिहास के पन्नों पर मेहर लगाए हैं। पिछले हफ्ते की प्रोग्राम में हमने एक ऐसे ही फनकार के बारे में बयां की है जिन्होंने कई यादगार फिल्में पेश की है। वो है पेशकश और हिदायतकार महबूब खान। महबूब खान ने कई फिल्में बना चुके थे जो अमर है। उन्होंने फिल्म मदर इंडिया की स्क्रिप्ट तैयार कर चुके थे लेकिन उसे इंतजार था तो सिर्फ नरगिस की। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने बतलाई थी कि महबूब खान ने राज कपूर के पास गया था उसे नरगिस के इजाज़त मांगने, क्योंकि राज कपूर को एतराज़ था, वो नहीं चाहते थे कि नरगिस कोई प्रोड्यूसर के लिए अदाकारी करे। और महबूब खान ने फिल्म मॉडर्न इंडिया के अहम किरदार के लिए सिर्फ नरगिस को पसंद किया था। पर महबूब खान कब और कैसे मुतासर हुआ मॉडर्न इंडिया बनाने को, हम आपको ले चलते हैं 40वीं दौर में।

महबूब खान ने 2-3 फिल्में बना चुके थे। एक दिन शूटिंग के बाद उनके दोस्तों ने महबूब से कहा कि चले आज हम एक अंग्रेजी फिल्म देखते हैं। मेट्रो सिनेमा में कई हफ्तों से एक ही फिल्म पर्दे पर दिखा रहे हैं, फिल्म द गुड अर्थ। महबूब खान को शौक था अंग्रेजी फिल्में देखने को। फिल्म द गुड अर्थ देखने के बाद महबूब खान की दोस्तों जज्बाती तौर पर मुतासर हुआ, पर महबूब खान अपने दोस्तों से कहा कि ये कहानी हमारे गांव की औरतों की कहानी भी है, इस कहानी में क्या खास बात है। महबूब की दोस्त बाबू भाई मेहता उनसे कहा कि मुझे एक हफ्ता की मोहलत दीजिए, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, कहानी अच्छी है और किताब का नाम है द मर्डर। तो इसी तरह महबूब खान ने फिल्म द गुड अर्थ की कहानी और बाबू भाई मेहता की पढ़ी हुई कहानी द मर्डर दोनों मिलाकर नेहती फेतख में फिल्म औरत बनाया था। फिल्म औरत जिसमें महबूब खान की दूसरी बीवी सरदार अख्तर अदाकारी किया था, और इसी फिल्म में से हम आपको एक गीत सुनाते हैं।

फिल्म औरत का गीत आपने अभी सुरेंद्र और ज्योति से सुना अनिल विश्वास के संगीत पर। खास बात है कि इस फिल्म के अदाकारा महबूब खान की दूसरी बीवी सरदार अख्तर थी। इस गीत से पहले आपने सुना कि महबूब खान फिल्म द गुड अर्थ और पर्ल इस एस बुक के लिखी हुई किताब की कहानी द मदर दोनों कहानियां मिलाकर नेखतिन फेरतख में फिल्म औरत बनाया था। फिल्म औरत सुपर हिट हुई थी और 25 हफ्ते बॉम्बे की स्वास्तिक थिएटर में दिखाई गई थी। इस फिल्म औरत की साहूकार खेल्स हीटर पैसे की लेन देन करने वाले थे कन्हैया लाल, जिन्होंने फिल्म मॉडर्न इंडिया शायद देखे होंगे, उन्हें कन्हैया लाल का किरदार याद होंगे, अहम किरदार था लाला की। कन्हैया लाल को कैसे फिल्म औरत में लिया गया? उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ अक्सर स्टूडियो जाता था, जिसे फिल्मों में छोटी मोटी किरदारी के लिए बुलाया जाता था। कन्हैया लाल को शौक था अपने बड़े भाई के साथ स्टूडियो जाने को। स्टूडियो के बाहर दरख्त के छांव में साथियों से गपशप में उनके दिन अच्छे से गुजर जाता था। इसी तरह एक दिन कन्हैया लाल अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, काफी शोर मचा रहे थे सब। महबूब खान के दोस्त बाहर जाकर देखा तो उन सब की हल्ला गुल्ला में एक शख्स की आवाज उसे अलग लगा। उसे एहसास था कि महबूब खान को ऐसे ही आवाज की तलाश है फिल्म औरत में साहूकार की किरदार निभाने के लिए। महबूब खान कन्हैया लाल से मिलकर बहुत खुश हुआ था। उसे फिल्म औरत की साहूकार लाला मिल गया था। महबूब खान को कब, कहां और कैसे नरगी से पहली बार मुलाकात हुई, आगे चलकर आप बतला हम आपको बतलाएंगे।

अभी आपने उमा देवी याने अदाकारा तुनतुन की आवाज में फिल्म अनोखी अदा का गीत सुना, जिस फिल्म की पेशकश और हिदायतकार थे महबूब खान। महबूब खान की मुलाकात नरगिस से पहली बार कहाँ हुई थी? महबूब खान अपने दोस्त के साथ स्टूडियो से घर जा रहे थे। बारिश हो रही थी, दोनों भीग गए थे और आगे जाना मुश्किल था। सामने जद्दन बाय और मोहन बाबू का मकान था, नरगिस के वालदैन। महबूब खान ने अपने दोस्त से कहा, ये जद्दन बाय और मोहन बाबू का मकान है, चले हम थोड़े देर के लिए जद्दन बाय के यहाँ रुक जाते हैं। नरगिस के वालदैन महबूब खान को देखकर खुश हुए और अंदर आने को कहा। महबूब खान अपने दोस्त के साथ चाय पी रहे थे, उसी वक्त फिर से दरवाजे की घंटी बजी। नौकर ने जब दरवाजा खोला तो नरगिस सिर से पांव तक भीगी अंदर दाखिल हुई। दोनों को सलाम किया और फौरन अपने कमरे में चले गए। महबूब खान ने नरगिस को देखते ही अपने दोस्त से कहा, हम इस लड़की को अपने अगली फिल्म के लिए लेना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? महबूब खान का दोस्त ने कहा, मेरी नज़र में लड़की अभी छोटी है। महबूब खान ने कहा कि कोशिश करने से क्या कुछ नहीं होता है। उन्होंने एक नई लड़की की तलाश में था अपने अगले फिल्म तकदीर के लिए।

अगले दिन महबूब खान ने अपने दोस्त को जद्दन बाय और उनके शौहर मोहन बाबू के पास जाने को कहा। जी हाँ, ये कहने के लिए कि उसने उनकी बेटी को अपनी फिल्म तकदीर में अहम किरदार के लिए पसंद किया था। लेकिन जद्दन बाय जब सुना कि महबूब खान ने उसकी बेटी नरगिस को फिल्म तकदीर के लिए पसंद किया था तो उन्होंने एतराज़ किया, ये कहकर कि नरगिस अभी 14 साल की बच्ची है। पर मोहन बाबू नरगिस के वालिद अपने बीवी को समझाया और कहा कि बेबी अब 14 साल की हो गई है, छोटी बच्ची नहीं है। आखिर मियां बीबी मान गए थे और अपने बेटी नरगिस को इजाज़त दिए फिल्म तकदीर में अदाकारी करने को। एक गीत के बाद कहानी हम आगे बढ़ाएंगे। आइए सुने फिल्म अनोखी अदा में से एक और गीत।

इस फिल्म से पहले आपने सुना कि नरगिस की वालदैन अपने बेटी को इजाजत दिए थे महबूब खान की फिल्म तकदीर में अदाकारी करने को। अगले दिन जब नरगिस महबूब स्टूडियो में कदम रखी तो महबूब खान नरगिस को नहीं पहचान सका। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि ये तो वो लड़की नहीं है जिसे वो उस दिन देखा था। ये लड़की तो देखने में लंबी और मोटी लग रही है।

जी हाँ, वो नरगिस ही थी। उसकी माँ अपने बेटी को ऐसे सजाई हुई थी ताकि नरगिस देखने में सयानी लगे। जद्दन बाई अपने बेटी को ऊंचे एरी की जूते और घाघरा चोली के साथ चार घाघरा पहनाई थी ताकि देखने में वो और सयानी लगे। वैसे तो नरगिस 4 साल की उम्र में अपने माँ की फिल्मों में अदाकारी कर चुकी थी। फिल्म तकदीर में नरगिस 14 साल की उम्र में अहम किरदार निभाई थी और वो भी उन दिनों का मशहूर अदाकार मोतीलाल के साथ। फिल्म तकदीर के कामयाबी से महबूब खान की तकदीर जाग उठा। इस फिल्म के बाद उन्होंने फैसला किया फिल्म हुमायूं बनाने को। इस फिल्म उन्होंने अशोक कुमार, वीना और दोबारा नरगिस को लिया था। महबूब खान के लिए नरगिस खुश नसीब थी। फिल्म हुमायूं के बाद महबूब खान और कई फिल्में बनाए, जैसे अनमोल घड़ी, नूर जहान के साथ, ऐलान, सुरेंद्र और मुनव्वर सुल्ताना के साथ। फिल्म अनोखी अदा, जिसमें नसीम और सुरेंद्र अदाकारी किए। फिर नेखती नेखन फेरतख में महबूब खान ने फिल्म अंदाज पेश किया, जिस फिल्म में नामी फनकार थे नरगिस, दिलीप कुमार और राज कपूर। इस फिल्म की हर एक नगमे सुनते ही कानों में शहद घोलते हैं और नौशाद अली की मौसिकी कौन भूल सकता है।

फिल्मी दुनिया आपने अभी सुना, जिसमें हमने महान मारूफ शख्स महबूब खान के बारे में बयान किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए आइए सुने ये मतलब का गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में।

दीवाना आदमी को बनाती है रोतियां। दिल छू लेने वाले गीत पेश था, स्वर थी मोहम्मद रफी साहब की। ये नजर मुंतजिर है तेरी आज भी, दिल किसी और से आशना ही नहीं। मैं क्यों रास्ता दूं किसी और को, जब कोई तेरी जैसे बना ही नहीं। मन मेरा तुझको मांगे।

अनमोल नगमा पेश था कल्याण जी आनंद जी का सजाया संगीत, बोल था शायर इंदिवार की। रात का अंधेरा पूछ रहा है हमसे, कहाँ गई वो रात भर बात करने वाले। हमने कहा मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है।

शहराना अंदाज में पेश था ये नगमा। मौसिकार मदन मोहन की मौसिकी थी, दर्श को लिखे थे शायर राजेंद्र कृष्ण। अब आइए सुने किशोर कुमार से ये नगमा।

कमाल का नगमा पेश था, राजकमल का संगीत रचना था, गीतकार थे इंदु जैन। ना किसी का दिल मुझे चाहिए, ना किसी के दर के तलाश है, सुनाने को जा रही है मीठे सुर में आशा भोसले।

तुम महकती जवां चांदनी हो, फिल्म प्यासे दिल में से ये नगमा लिया है। मौसिकार खयाम की मौसिकी थी। दस को लिखे थे शायर जाम निसार अख्तर। तुम मेरे हक में बोला तो ऐसा लगा, अब मिली है सवरती हुई जिंदगी। दिल की ये आरजू थी, दिल की ये आरजू थी कोई दिल रुबा मिले।

सदाबहार नगमा पेश था, आवाजें थी महेंद्र कपूर और सलमा आगा की, रवि की मौसिकी थी और हसन कमाल का लिखा तर्ज था। फिल्म नजराना में से अगला गाना पेश है, आवाजें है मुकेश जी और स्वर की मालिका लता मंगेशकर की।

0: इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साथ।
1: फिल्म नजराना में से ये दो गाना पेश था और ये फिल्माया गया था राज कपूर और वैजंती माला पर। जिंदगी जिंदगी वीरान थी, चाह न थी जीने की, देखा उसे तो मुझे बहाना मिला जीने का। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर अगर तुम ना होते।

सदा बहार नौमा पेश था, राहुल देव बर्मन का सजाया संगीत था और गुलचन बावरा का लिखा तर्ज। शायराना अंदाज में पेश है ये नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

एवर ग्रीन सॉन्ग पेश था, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत रचना था। करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए, करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए कि फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं, दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ।

मोहब्बत भरी अंदाज में पेश था ये नगमा। मौसिकार रवि की मौसिकी थी और स्वर मोहम्मद रफ़ी साहब की। इसे रोमानियत अंदाज में सुनवाते हैं। अगला गीत आवाज़ें है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की।

संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का संगीत और शायर इंदिवार का गीत रचना में पेश था ये ड्यूएट। एक बार फिर लता मंगेशकर से सुनवाते हैं अगला गीत और सुर से सुर मिला रहे हैं मन्ना दे साहेब।

फिल्म चोरी चोरी में से पेश था ये जुगल गीत, शंकर जयकिशन संगीत से सवारे थे, बोल था शायर हसरत जयपुरी का। हो जो मुमकिन तो मुझे अपना बना लो तुम, मेरी तन्हाई गवाह है कि मेरा दिल नहीं लगता तेरे बिना, तेरी बिन जीना नहीं।

तेरे बिन जीना नहीं, बलि ब्रह्मवत की आवाज थी। संगीत सजाने वाले थे बलि ब्रह्मवत और अहसान अहमद तर्ज को लिखे थे। लता मंगेशकर से आइए सुने ये नगमा।

फिल्म छलिया में से पेश था ये गीत। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अब आ रहे हैं अपनी आवाज से कानों में रस खोलने महान गायक कुंदलाल सैगल जी।

मैं क्या जानू क्या जादू है, सुनहरे दौर के महान गायक कुंदलाल सहगल की आवाज में पेश था ये गीत। उस दौर के कई उभरते गायक उनके जैसे गाने की कोशिश करते थे, जैसे कि मुकेश जी और किशोर कुमार ने। अब आ रहे हैं दिल खुश करने अपनी मीठी स्वरों में मना दे और लता मंगेशकर।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार। खारिमा थी निशा।

Blue Jana Radio, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंद नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

0: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो। तू जाने है तो
1: आप खा रहे कि नहीं खा रहे?
2: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
3: डाइटिंग?
4: लगता तो नहीं।

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

बचपन भूता हो फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या होगी।

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई